मुझ मयाम बाब कर गए हम दूसरी से मर गत मयाम बाब कर गए मुझ कंटोम फाल अगल विजय मंगल माचार रंबक माचार ब्रह्म प्यार यार बच्चे से दुआई बर मलहर बोलिं बच Yeah, I got a job.